हर जन के वट भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिला तृप्तास है मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तन तुर मस्तक लिख्या लिखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा।

ओ संत हो जी सब दुख विसारण हारा, हर आपे ठाकर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा।

पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सतर हमारे मारिया है। आप हाथ है मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्त जुजू करियो।

जवन काल जोगी सिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो।

सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, पले बरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथुला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संत

जेते बदनर श्रेष्ठ सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सभी ते रहत निरालम, जानत बेद बेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ।

कहो सिमट पयो संकर एक ऐठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्यंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोष जेते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रणकाता। जे अस्तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तो है मरे। पुरख

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किलबिख सकल देह को हरता, दोस्त दोखियन को छह करता। श्री अस्तु जपे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांचत फल पावे सोई, दुख न तिसे ब्यापत कोई अड़िल। स्नेह गोंग जो याहे, सुरसना पावे, स्नेह मूढ़ चित लाए चुरत

सैस पणिजय अर्ध सैस हुंदीन कहिजय। पादर सुदी अष्टमी रववारा तीर्थ तदर्व ग्रंथ सुधारा। इत श्री त्रोपक

प्रथम तरो भगवत को त्याना बहुर करो कपता बिदनाना कृष्ण जथा मच्छुर उचारो चूक होए कबले हो सुधारो कब्यो बाच दोहरा।

तित कर गाव हो सोयला सिवरो सृजन हारो। तुम गाव हो मेरे निरपव का सोयला हो वारी जित सोहले सदा सुख होय रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार। तेरे दान है कीमत ना पवै तिस दाते कौन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पाव हो तेल देहो सजना सी सड़िया जो हुए सहल सुमेल। घर करो पाहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा। सिमरिए नानक से दया मन रागा सा मुहला पहला। छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुरे को वेस नेक। बाबा जयकर करते कीर्त हुए सो कर राग उड़ाई तुय तो रहा।

मान अपमान नानक प्रकार की अवख्यान आवन के लाभ कर देखा खेल संकोचा तो नानक कह जह अवगत भगत तह आप जह पसरा पास सर संत प्रताप दोहु पाह कया पह तन उनकी सोवै उन्हों बनी आप कौत कर आनंद चो जा पर भोग निर्जोग जह पावत सपना लावे जह पावत खेल खिलावे बी सुमार अथाह अगणत अतुलै ज्यों बुलावह त्यों नानक दाह बोलै श्लोक जी जंत के ठाकुर आया पे वर्तन हार नानक को पसरिया दूजा कह दृष्टा राष्ट्रपति आप कथे सुन निहार आप ही काव्य स्थार जात पावतन सृष्टि उपाय आपन पाणी रहे समाय तुम ते भिन्न नहीं किछु है आपन सु सब जगत पुरे जा कहो प्रभु जीव आप जाय सच नाम सोई जन पाई सुसमदर्शी तत्कविता नानक सब श्रेष्ठ का जीता जी अजंत्र सब तक है दीन दयाल अनाथ को नाथ जस राखत हुए न मारे समुआ जह मन बसार देहता जबर कहाँ को जाय सब श्री क निरंजन राय जी की जुगत जाक सब हाथ अंतर्वाह जान हूँ।

चौपाई को कहा। चौपाई संवत 1760 अर्धसहस्र 3 भाद्रव सूर्य अष्टमी रव वारा तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जापते तुमरे तापे कुआं करे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान नी कह माते एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब भेद कहें हम एक न जान्यों।

और तीसरी बख्शिश है गुरसिखां दे घर दा जन्म। चौथी बख्शिश है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरणां विच हर रोज़ आउणा, गुरु घर लागे है। और पंजवीं बख्शिश गुरु घर आ के बैठना, बाणी पढ़नी, सिमरन करना। गुरु अमरदास महाराज कहिंदे ने बाणी पढ़दे आं, सिमरन करदे आं, जिवें डाक्टर कोल दवाई लैण जाइए, डाक्टर कहिंदा दवाई तां कम करेगी पर असर तां ज़्यादा होएगा जे कुछ परहेज करांगे। जे परहेज नहीं करांगे ते जिन्नी मर्जी दवाई खा लो रोग मुक्त नहीं होगा। हुण परमात्मा दी बंदगी करदिआं समें, बाणी पढ़दिआं समें महाराज जी ने कुछ ऐसे परहेज दसे हन। वह परहेज जिन्हां परहेजां नूं करके सुरत निरंकार दे नाल जुड़ी रहे। हुण संसार दे विच धन दी गल महाराज कर रहे ने, उपदेश भी गुरु पातशाह महाराज जी का है, किरत करनी, नाम जपना ते बंड के छकना। किरत करन दा भी उपदेश है, माया भी जोड़नी है, कारोबार भी, सारा कुछ करना। पर महाराज जी ने फिर काचा धन किहनू कहा है? काचा धन की है? महाराज कहिंदे ने कितें सारा जीवन जिन्नी उपजीविका वास्ते माया चाहीदी है उन्नी कमाई नेक करके जोड़ लै जिहदे नाल तेरा परिवार पले। पर ये ना भी हर वक्त माया दे विच ही ग्रस्त रहे। गुरबाणी जदों पढ़ते हाँ, गुरबाणी दे विच हर एक गल नूं दो बार किया गया है। जिमें पातशाह ने इशनान की गल की है, कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा, कि भाई इशनान करना है। हुण नाल ये भी लिखिया है, जल के मजन जे गत होवे नित नित मेंड कनावे। ये भी कह दिता ना कि जे जल दे नाल इशनान करन दे नाल ही मुक्ति प्राप्त करनी हुंदी तां डड्डू तां रोज़ पाणी दे विच रहिंदा, उह तां केसी इशनान रोज़ करदा, फिर सारा ही पाणी दे विच 45 लाख जून पाणी दे विच ही रहिंदी है। किधरले पासे नूं जाऊंगा? असल विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी जिहड़ी बाणी है ना, साध संगत निरंकार दी बाणी नूं बहुत गहराई नाल समझना पैंदा है। गलत कित्थे हो जांदा है? जदों असीं अपने हिसाब नाल गुरबाणी दे अर्थ करन लग जांदे आं। इत्थे महाराज जी दे समझाउण दा ढंग यह है कि वेखी किते इशनान तक ही ना रह जी, इस तो अगे भी मार्ग है। आखो सतनाम, क्योंकि उस वेले का यह समा सी, लोकी कला इशनान करन नूं तरजीह दिंदे सी, फिर इशनान कर लिया तो मुक्ति प्राप्त हो जानी। महाराज कहिंदे ने कल्ले इशनान दे नाल गल नहीं बननी, इशनान तो तां शुरू होना वा। दूसरे पासे गल माया दी है, माया माड़ी नहीं, कमाई नेक करनी है। आखो सतनाम, दूसरे दा हक मार के, कपट करके, धोखा करके, धोखा करके कीती हुई कमाई नूं कच्चा धन कहा है। किसे दा हक मार लिया, हक पराया नानका उस सूअर उस गाय। महाराज जी कहिंदे ने हक मार के
ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੂਰਖ ਹੈ। ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 40 ਗੰਜ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋਰੀ ਸੋ ਫਿਰੈ ਪਰਮੰਤਾ, ਦੋਹੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ, ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਸ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਾ ਲਿਆ।

संगत प्राप्त हो गई। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने चरणों में बैठने का समा प्राप्त हो गया। अति चंगे भागां वाले वो दिन रात उस परमात्मा नूं जपदे रहिंदे ने, उन्हां दा मन टिकिया रहिंदा है।